0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: आप जी दे दर्द चाड़ू बरदार इतने कितनी समाप्ति कर दें कीर्तन करने बाणी पढ़ दें आप जी दे आनंद शेव कंद को बेंत पुला हुई होंगी आप जी बख्शन जोगो पुलन चुका लिखे मां अयो संगता बलो परम पूज सिंह साहब जी बलो बेंत माया शोध पीठ हाजरा पातशाह जी जिन खजाने कमाए सुख जाने भरपूर कर रहे शोध खालसा जी काज राज कर रहे हुक्म है जी पंच मिनट का शब्द मन कर दे कि कीर्तन कर जाइए सवैये महले चौथे के जीत बिचों टेक है सच साज

एक शब्द हम मैं तुम्हारे सामने पेश कर लगा, बहुमुला शब्द है। इस शब्द की कोई कीमत नहीं दिखती जा सकती। गुरु साहब सानू इस शब्द हम ये समझान लगे हैं, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हैं वो सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हैं। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता, हर बंदे नु कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नु पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने क्या

गुरु की साथ समेत आओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांडा और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी का।

मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

महबूबे की बात की गाय के सन्माने डिमांड निकाने रकान संत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देकर बड़ी अकीदे के नाम में बैठी गुरु साहब सिंह जी आप जी सरकार के काबिल हो जो आप जी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के आप जी ने समा कटिया जलों आप जी ने सोच लिया कि आप उत्तर बाद में जाना है एक गल ना ही घट आय हो गई सब कुछ टूर ट्रेंड आगे हो गई थे सब जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत की गल की सच संजो दिवान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी कान जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच संघ जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजमून न बन गल है आदि गल है मेहनत जिन की सुपार है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजमून नहीं जिन्हें करना है शासन की वोटी ने मिली पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है यह तो आड़ है सचिंद जी भाई साहब जी कहा तो हाली तक का राह बिल्कुल नहीं मिलता सी इस तंत्र शुरू गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि का स्वरूप है ना परमेश्वर यह पहले जवाब है जब जो सब समझ आए कीर्तन की है तो फिर सात संघ की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लास्ट 25 मिनट टाइम है लास्ट तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रब चोट बनाणी राग तकलीफ है यत्न करेंगे कल नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਕੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਸੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

मोले तार बारिश करे। बारिश जोरन हरी अपने नितनेम अनुसार उठ के अपने मुर्शद नु इशनान कराउन वास्ते पानी गर्म करना चाहुंदा है पर अग बुझ गई। बारिश करके जोर दी बारिश होण करके अग बुझ गई। पानी किवें गर्म कीता जाए जे अज पीर नु इशनान ना कराया तो 12 सालां दी कीती होई खूह च पै जाए। अज आखिरला दिन सी हरी दी बंदगी संपूर्ण हो 12वें साल दा आखिरला दिन फरीद नु रब दे मिलन वास्ते कितनी कालना कालनी पई। जंगलां दे पत्ते धू के खा

पर मेरे धन गुरु नानक सके पातशाह फरमाते हैं स्त्री अपने पति नहीं परमेश्वर समझ लवे घर ही चिरा मिल जाए मिल गया कई मिले बड़िया साखिया गुरु इतिहास माई रजनी ने पिंगले नु परमेश्वर समझ लिया माई रजनी ने पिंगले नु कौड़ी नु परमेश्वर समझिया पर प्यारी सात संगत मेरे पंजे पाता मैनू पानी नहीं दिता पानी डोली क्यों जाती है माई रंगरती ने कहा फरीद कुछ मीला उत्ते मेरी भैन का घर है ओनू अग लग गई उथे कोई पानी का प्रबंध नहीं इथो पानी पहुंचा रही खुश री मारी और हैरान फरीद ने कहा मैनू सोझी नहीं पी मैं इतने साल बंदगी की थी। माई रंगरती दे चरणा ते ढह पिया फरीद बेटी उमरा वालों तू भावे छोटी है पर गुणा वालों तू मेरे वड्डी है मैनू समत दे मैनू साई किस तरह मिलेगा कवन संयोग मिलो प्रभ अपने कवन गुण प्राण पत्र।

खोजत खोजत भई बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई, कोई गुरु धारण कर। बाबा जी वचन करते सन, कितना जप तप क्यों ना कर लवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होंगे। कितना कर, तीजी पातशाह ने 21 वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया जी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आखो श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथो पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी, गुरु मिल गया भाई सबो कुछ, असि गुरु वाले तां बनते हां जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही है। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं, लावारस कुत्तियां दे तरह मार मुकाया जाता, उन्हों का जीवन किस काम है। गुरु की वड्डी शक्ति, गुरु का वड्डा आसरा, गुरु का बड़ा माण है। बुले शाह ने लिखे, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुले शाह मैं मुर्शद मिलया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन्हों से मेहर करते भाई मेरा साईं। माई रंगी ने कहा फरीद, कोई गुरु धारण कर चला जा अजमेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है, ओनू जाके धारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे ओ करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहेगुरु। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा किरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए, इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा, अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया। अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, कित्थों लियावा अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वारी अजमेर गया है, सके मुसलमाना दा दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनिया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी के उत्ते अग भी पाल की थी। दूर वेखे अग का लिशारा पे, तुरन लगा ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया।

कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडिया विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावई।

पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावे। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नू मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है। कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां 18 सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर। कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओहदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओहदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वो किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे, फरीदा ढूंढे दिए सुहाग को,

सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी। और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

बिहारी शिव कर्ण को शिव गुण सुख दियो सतरन को परमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थुला सब पर कृपा दृष्ट कर।

कहुं समत पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ खाय चंपो आज काल स्वरूप श्याम भव और अच्छा मेरी तुम करो सिख्यु वार सिख संग करो दोष जिते उठवा तुत्पाता सगल मरेज करो रणकाता जे असुष्ट सरणी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे।